वाहे गुरु साहिब जीओ। हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया राम राजे। हर नाकश दुष्ट हर मारिया पहला दराया। अहंकारिया निंदका पिट दे नामदेव मुकलाया। जन नानक ऐसा हर सेवया अंत लय छड़ाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख तब न होई। तू करता करना मैं नाही जाहु करी न होई। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहिया। तू सच्चा साहिब सिवत सवाले ओ जिन कीती सो पार पया। कह नानक करते कियां बातां जो किछ करना सो कर रहिया। सो दर राग आसा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा केहा सो कर केहा। जित बै सर्ब समाले वाजे तेरे नाद अनेका संखा। केते तेरे वामन हाड़े केते तेरे राग परी सो कही आए। केते तेरे गावन हाड़े गावन तुद नौ पावन पाणी। बैसंतर गावै राजा धर्म द्वारे। गावन तुद नौ तित गुप्त लिख जान नौ लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवते अंदर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़ नरखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुरग मछ प्याले। गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अड़सड़ तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरी धारे। से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले।

जगमाता ग्रंथ करं पूर्ण सुभ्रातं किल बिखु सकल देह को हरता दुष्ट दोखी अन कौछ करता श्री अस्तो जो जप हिंदयाला पूर्ण करं ग्रंथ तत्काला मन बांछित फल पावे सोई दुख नत सब आपत कोई अड़ेल सुनै गोंग जो जाहे सुरस न पावई सुनै मूड चित लाए चतरता आवई दुख दर्द पाव निकट नंग तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पुण जाय अर्ध सहस पुण तीन कह जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रव बारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र उपख्याने तिरे अंग चरित्रई मंत्री भूप संबादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू दोहरा दास जान कर दास पर कीजा कृपा पर आप हद राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपाई मैं नगर सह प्रथम नाऊ केशन बेशन कबू न त्याऊ कान सुने पहचान तिन सौ लिव लागी मोरी पग इन सौ महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवारो बाह गह की लाज विचार

जान अपना मुजनवा जो आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीबन बाजा।

नित राख उर तहारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस प्योई। तरस पिया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया, नानक ना मिला तो जीवा तन मन तीवै हरिया पौड़ी। तिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे, उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन के जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे, पौजल बिखमस गाह गुर शब्दी पार पाहे। जिन को लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे, वृथा कोई न जाए जियावत दयाहे। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जिह जाप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरथया दरगह पाई अठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनु एह वस दे। जग मह उत्तम काढ़िया है विरले के इके। महला पंजवा। रखे रखन हार आप बारे न, गुर की पैरी पाए काज सवारे न।

और प्यारी सात संगत जी, अज दे दीवान सो राड़ा साहब जी समूह संगत वालों बाबा ईसर सिंह जी राड़ा साहब वाले की बरसी मुख रखते हैं। कल रोज तो श्री अखंड पाठ साहब संगत वालों आरंभ हैं। सो अज भी जो लंगर की सेवा उन्होंने वालों हो रही है, सो अज बाबा ईसर सिंह जी बरसी दीवान समर्पित हैं। सो आओ हुण भाई साहब जी भाई जरनैल सिंह जी का रागी जथा सरबत संगत नू गुरु की बाणी का कीर्तन सरवण कराउणगे। उस तो बाद जो अपने पास सो इंडिया तो भाई साहब जी बाबा भोला सिंह जी आए हुए हैं नानक साहब वाले, सो वो गुरु की बाणी की कथा सरवण कराउणगे गुरु इतिहास। सो आओ हुण भाई साहब भाई जरनैल सिंह जी के पासों कीर्तन सरवण करते हाँ भोल चुक की खेमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान खंडा ब्रह्मंडा दे मालक तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र गोद दे विच बैठ के गुरु घर दे कीर्तनीए उन्हां दे कोलों हरी जस कीर्तन दा रस गुरु पातशाह की मिठी अते निघी गोद दा निक माण रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी वड्डे भागे हाँ जिथे आपां गुरु की गोद दे विच बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया उत्थे नाल दी नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़न वाले महापुरश बाणी दे दर घर दा प्रचार करन वाले महापुरश धन धन बाबा नंद सिंह जी दी वी अज बरसी है अते नाल दी नाल परम प्यारे सत्कारयोग तत्वेता महापुरश धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहिब वाले उन्हां दी बरसी दी याद भी आपां मना रहे हां। गुरु साहिबां दे एक बचन

रूप रंग ना जात पात सो जानहिं कह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बक्र फिरे चत्र चक मानहिं पुरतीन लोक चौदह के

खापार सर्व बिस्वरच्यो स्वयं पव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरखा देश धर्म ताम सो परम रहता भूतल का पेस अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन यात रूप सूत अंगहीन पंग नातम एक पुरखा पार सर्व लायक सर्व कायक

सर्वत्र पोख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है, के सर्वत्र जाप्य है, के सर्वत्र थाप्य है, के सर्वत्र पान है।

कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे ना ही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिन्नी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु से

0: देखे किता है अपना तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आए बारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साए मन विसारी है, अपन थी अपना आप ही कार सवारी है, आप ही कार सवारी है।
1: जिन्ना पेटिया मेरा पूरा

असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पखसार।

चार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंद

न ठगे जाहि, जिनकै राम बसै मन माहि। तिथै भगत वसहै केलो, करहै नंद सच्चा मन सोए। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल

वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। ते बहादुर सिमरी है कर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए

हो, शिरशाहां दशाहो, जिस पास बैठियां सोहियां सबना दावे साहो, जिस पास बैठियां सोहियां